हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जपताड़न बिना संग योग नहीं। प्रभु दर्श बिना